0: रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का, उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट, ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण।
2: विज्ञापन से ठीक पहले आप सुन रही थी अलका याग्निक को फिल्म तेरे नाम में। गीतकार थे समीर, संगीतकार हिमेश रेशमिया। कोई मेरे दिल में है, आई सुनते हैं इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। शब्दकार फैज अनवर, संगीतकार निखिल बिने।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में आंख में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: इज्जत की रोटी, ये फिल्म का नाम, आवाजें ही अनुराधा पौडवाल।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

स्वरमे मैथिली पुत्र प्रदीपके गीत रचना हमरा लोकनि सुनि रहल छी। आशा करै छी नीक लागल हैत। बन्धु लोकनि, हमसब जखन साहित्य साहित्यिक परम्परा सभक गप करै छी तऽ मोन पड़ैत अछि गाम घरक खिस्सा सभ, दादी नानी कोनामे बैसि जखन हमसब ओ खिस्सा सभ सुनैत छलहुँ तऽ ओकर आनन्द फराके होइत छल। ओना एकटा गप तऽ निश्चित अछि जे अपनासभ ओहिठाम खिस्सा कहबाक समृद्ध

समय महिला पुनर्जागरण के समय है।

डिजिटल इमेज विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पारंपरिक पत्र पत्रिका सब स्थान लऽ रहल अछि आ एकरा माध्यमसँ सेहो मैथिली कथा सब पाठक लोकनि धरि पहुँच रहल अछि। बाबा भावी जे एखुनका समयमे

दक्ष उपेंद्र दोषी 1976 में लिखल आ 2000 ईस्वी में गंधवाह नामक कथा संग्रह में संकलित झीक शीर्षक कथा। जरलाह केहन समय भ गेल, दिन रात वर्षा आ ताहु पर साले साल बाढ़, कोना खेपते लोग कोना जीते। बाम भाग में अंदाज शेर तिनियेक मकई एकटा पथिया में रहे उलाओ, उम्मी एक बेर को उठाओ मकई दिस ताके, एक बेर को चहरे मेघ दिस, चानी पीटल बाद बोल खेत पथार दिस, गए छठ तो जाही में रगड़ी नैन ही, दूटा रोटी ठोक दिए नैना सब लहा लोट ले छे। हाँ कहू तो की भ जाए छे छोड़ी के, हट्ठे उठते ने रहे छे कोनो काज ने, गए उठ ने झट द, जेना पैरे ने उठे कोना अंठौने रहे छै, उम्मी जेना सुनबे ने कैल के, माय टटैत रहले आ ओ तकैत रहले

अनहार में हेड़ाए और वर्तमान अनहरिया राज्य में हेड़ाए सुई सन उम्मी के कतुम में अभर में उम्मी तकई तरहाली अपन पुबरिया पशबरिया घरक अवशेष घर भीतर दुनु घर कहिया खस पर दे उकरा ठेकान नहीं छे एकटा घर रहे दक्षिण से सेहो एक बाढ़ आ वर्षा में दहा गई डीहटा हाथी अस्थि पंजर जका पड़ल छे डीह जत सँ गामक दक्षिण दूर बहुत दूर धरि ताड़क गाछ पौन नजरि अबैत छे उम्मी मकई के पथिया पर हाथ धैने सोचैत रहे माय फिर टुकल गई है कुछ नहीं होइ छौ कहू तो एकर टल दे कहाँ छलू एहन सुस्ती पहिने की भऽ गेलै छौरी के से नहीं जाए ला हम अपने पीसिया नहीं छी एखन तो हमरा भगवान सामान देने छथि ला आ माय ओकरा हाथ सँ मकई के पथिया उठाबऽ लगलै है जाय छियै एतबा मकई पिसैत कतेक देर लगतै जाय छियै मुदा उम्मी जेना फेर नहीं उठाए घर खसि पड़लै बाहि में कतौ जैतै चारू गोटे मने अपने माय आ एकटा छोट भाई एकटा छोट बहिन उम्मी चिंता करऽ लागे कतौ जाऊ की करू ताबे छोटकी पिटियाए जे करीब 5 बरख सँ भिन्न छथिन कहलथिन ए उमा दाई हे एही जारन वाला घर में चल जाओ मायो के कहियो अनका अंगना जाएब लोग की कहत एही घर में कोनो ना रहू अरे रातिये भर में से सब क्यों असुरे पर पटिया उछा उछा पंघरा जाए की करबे उम्मी के पिटियाइनक बात नीक नहीं लगले आंखिक पिपनी आर्द्र भ गेले एक बेर आकाश दिस तकलक फिर चारू कात हियासी को हिचुका लागे पैरक अंगूठा सँ बाढ़ में भीजल टी खोदैत रहे दहिना हाथक तर्जनी सँ भीजल माटि पर चिरचिरी पाड़ैत रहे कनैत रहे सोचैत रहे बाबू रहित छथिन तो किन्नौ ने दूसरा घर जाय दिथिन बाबू नहीं चाहत तैं ई हाल बिनु बापक लोक किछु नहीं हुई है बाबू रहित छथिन तो दक्षिण बरिये डीह पर एकटा मड़ैया ताबत ठाड़ कऽ दिथिन बाबू आ उम्मी कोर फेर जना दड़कऽ लगले बाबू कहिया मिलथिन ठेकान नहीं छै छोटका भाई भरिसक साले भरिक रहे उम्मी के होइ छै बाबू के महीना 8 बरख सँ कम नहीं भेलनि अछि ताबत उमियो फराके पेंट पहिरैत रहे बाबू के आनल पेंट आ फराक सोचैत सोचैत उम्मी फेर बुम फाड़ि कऽ कानऽ लागे ताबत दुनू छोटका भाई बहिन पथिया मौनी टिनही थारी बर्तन सब पिटियानक चारिन वाला घरक ओसारा पर राखि अयलै उम्मी उठल आ पटिया में सबटा बिछाओ अपन अमायक पुरान बुआ सब किछु समझ कऽ ओसारा पर राखि आयल बाबूक रामायण आ पूजाक सरंजाम उठबैत उठबैत फेर बुकौर लागि गेलै बाबू कतेक मानैत रहथिन उम्मी के मुदा उम्मी आर अधिक काल धरि भूत में ओझरायल नहीं रहल चूल्हि पर भाटाक तरकारी लाड़ैत माय फेर टुकल गई गए गेलही नहि जाय छियै नहुए निर्मिरायल स्वर में उम्मी बाजे आ दोसर आनन मकई के पथिया लऽ कऽ विदा भऽ गेल 19 बरखक उम्मी के कतौ कतौ जाय पड़ैत छै के बुझल एकटा बापक नहि रहलै नहि तऽ उम्मीक बियाह भेल रहितै सासुर बसल रहित उम्मी तो हट्ठे के जाँत लग जाइयो नहि दैत छै जेना लोकक जाँत केओ खा जतै माय बिजते नहि रहैत छै कहलियै अपने जाँत गाड़ि ले मुदा कतौ गाड़ नहीं गारते तो सुनैत रहो लोकक गंजन हे दाई हमर जात तर जुन जा खिया जाए अपन संजोग ने छ हां हां हम प्रसाद पिसले एखने जात धोलम अछ हे उम्मी तोरा एक कोरती विचार नहीं छ हे आनक चीज कतेक दी हमर कील टूट जाए जाने ओई जात तर ई जनी दोसर आंगनक पाठ दिखा देल छी काकी कनिए मकई छ पिसो दे उम्मी टुकल गई हे झट द रगड़ ले हम हूँ थोड़े अरबा चाउर पीसा उम्मी बैस गए बामा हाथे हथड़ा पकड़ को जातक ऊपरौटा उठौल दहिना कात राखल कुच्ची से तरौटा झाड़ लागे बहार लागे जात जखन चिक्कन भ गए तो जातक चारू का

பேரி சிக்கன் காத்துக்கு உண்மை நீக் ஜக்கா வைசிக்கு பாமா பேர் மோடிக்க தஹினா சாபா பரசம் நுவா சசரிக்க ஜெயும் தரி ஆவிகளை தோ பேர் சசாரிக்க சாபா சாட்டி நேர பாம ஹாத்தே ஹத்தடா தேல தஹினா ஹாத்தே மக்கை எக்டா பாரிகர் முட்டி ஜீக் தெல்க அச்சாத் சலாபோ லாகை கார் கார் கார் பாம ஹாத் பாரிகளை தோ பேர் தஹினா ஹாத்தே ஹத்தடா தேல பாம தஹினா தஹினா பாம ஃபெரைத் ரஹல் உம்மி குனோனா ஆதா மக்கை நிங்கட்டா லேல ஒக்கரா பிலே ஜெ பிரு கீட்டே ஜாத் பட ஜப்தாஹ் லகே சி சே ஓ பேர் ஏக் முட்டி ஜீக் தில்கே एकटा लगनी उठौल सासु देलखिन गहूम ननदि जलन संग लगनी गुनगुनाई ओकरा अपने लाज होबय लगलै कने अनसुहात सेहो लगलै चुप भऽ गेल उम्मी चुप किया भऽ गेल हक केहन बढ़िया तऽ उठौने रहब कहक गीत संगे उसरबो करता छठत जात बालिका की टोक देलखिन मुदा उम्मी लेखे धन सन कोनो उतारा नहीं देलकै झीक पर झीक दैत रहे बाम दहिन फेरैत रहे अंदाज पाव चिनी एक मकई बच गेले पीसो आप उम्मीद बुझे एक को झीक तेल पार नहीं लगते आँखी लग अंधार लाग लगले आ ओ दोनों हाथे हथड़ा पकड़ी को हथड़े पर माथ टेक लेल आँख मुनी लेल थुर इजरलाहा के की भ जाय छे अने पहिने एना कहाँ होइत रहे पहिने माँ से मास कनी कमजोरी हाथ पैर में झुनझुनी लहर डाँड पीठ पेरू में दर्द मने मोन कने चिरचिराह जका उदास खिन कोनो काज में मोने नहीं लागल कने दोनों भाई बहिन देह धाइ देत रहे माथ मीट लेत रही कि केहन ने टन आब ई दू मास सँ की भऽ गेल अछि हथड़ा पर सँ मूरी उठौल एम्हर उम्हर तकलक ससरि गेल आँचर के हपसि कऽ देह पर कऽ लेलक देह झपलक फिर नुआ के नीचा ससारि कऽ छावा झपलक आ एहि बेर पामा पैर पसारल आ दहिना मोड़ी लेलक एकटा हल्लुक सन झीक देलकै दू बेर चाँक चलौलक कि फिर वह हाल फिर हथड़ा पर माथ टेक कऽ आँखि मोनि लेलक धुर की भऽ जाइत छै कतऽ सँ आबि गेलै एतेक कमजोरी पहिने खट्टा वस्तु सब एतेक नीक कहाँ लगैत रहै आ माछक चोखा सोनगर माटि किएक नीक लागऽ लागल अछि से नहि जाय पहिलुका फूर्ति कतऽ चल गेलै कतऽ सँ आबि गेलै एतेक आलस सुस्ती हरदम पड़ले सुतले रहबाक मोन किएक होइत अछि सोचैत सोचैत उम्मी जेना फेर डेरा गेल माय बुझतैक तऽ की कहतै काका बुझथिन तऽ सोझे काटि देथिन मुदा बाबू सोचैत सोचैत उम्मीक आँखि फेर असरेसाक मेघ बह गेलै ओ हथड़ा पर सँ मूड़ी उठा कऽ चारू भर तकलक क्यों नहि क्यों ओकरा कनैत नहि देखलकै आँखिक झोर अन्हार मे ओ अपन वर्तमान के जना ताकि लेने हो अन्हार आ भविष्य में हेरायल वर्तमान माय की जमैत नहि छै वह तऽ जबरदस्ती पठबैत रहलै अछि बदला में कहियो चाउ कहियो गहूम आ कहियो मकई अनैत रहलै अछि नहि तँ चारि गोटेक आश्रम कोना चलितै आइयो तो तीन सेर मकई सोचैत सोचैत उम्मी के फेर बुकौर लागि गेलै बाबू रहित थिन तऽ भल मानुषक बेटी ई हाल नहि होइते काका किएक काटि देथिन पिट्ठी वला कोनो कर्तव्य कयलथिन सोचैत सोचैत उम्मी फेर चाहलक जे झीक दे मुदा रद्द करबाक तेहन प्रक्रिया शुरू भेलै जे हड़बड़ा कऽ उल्टी में आबि गेल रद्द करऽ लागल रद्द की एक रत्ती पित्त थू जीतों ओकर ओहिना करीब दू मास सँ फिर छाइत रहैत छै ओकियाइत रहैत छै जात बालिका की ओकर स्थिति देखि भौर सँ बहरेलथिन आ उम्मीक पेट आ कोण ससारल गेलथिन हे उम्मी कोनो दवाइ खयबा से नहि एखन तँ पहाड़ सँ जिंदगी पड़ले छह माय कोनो दवाइ देथुन से नहि एकसर पिसिया आ अन्नक टूटल दे माय देरी बूझ धड़फड़ाई अबैत रहे बजले के करतै मायक दुलारू रहथिन तखन ने ओम्हर चूल्हि से जरैया माय बिन उम्मी पर ध्यान देनै चाँक छीकऽ लगली घर घर घर उम्मी के अनुभव होबय लगले

Lisa Pino, a pianista de Agra. Agra y de Cariscom Singer House.

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रेलकर आप तक पहुंचाएंगे। लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधवी आप सुनेंगे रात 10:00।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुस जलडब्बू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडब्बू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेयर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों पर मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न अवगत सत्रों में हिस्सा लिया जहाँ भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार सातवीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटपुट सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से उठती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया।

subsequent

0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को

0: विश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। संगलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन ए आई आर ऐप पर भी उपलब्ध है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए अफगान 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afghan.edcir.go.in। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्व उत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सुबोध मिश्र।
2: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक पर 24,086 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से

Subscribe.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी

आरती।

0: खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे के तहफ्फुज और फरोग के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने अपनी तहजीबी विरासत के तहफ्फुज फरोग और उसका जश्न मनाने के लिए कई तारीखी इकदाम किए हैं, जिनसे लाखों शहरियों में फख्र का जज्बा पैदा हुआ है। अहम वाकयात में सबसे अहम वाकया जनवरी 2024 में पेश आया, जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीम शान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम दिया। ये सदियों पुरानी एक ख्वाहिश की तकमील थी। हाल ही में मंदिर का दौरा करने वाले एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने तजुर्बात बयान किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, इको मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट का पहला मरहला अक्टूबर 2022 में कौम के नाम वक्फ किया गया। ये अजीम कॉरिडोर शानदार मुजस्मों, दीवारों पर बने फनकारों और तामीरात पर मुश्तमिल है, जो भगवान शिव की जिंदगी और उनसे मंसूब रिवायात की अक्कासी करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहानत पर मबनी निगरानी के निजाम से आरास्ता महाकाल लोक विरासत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका इफ्तिताह दिसंबर 2021 में किया गया था, ने यात्रियों के सफर के तजुर्बे को यकसर बदल कर रख दिया है। ये कॉरिडोर मंदिर को बराह रास्त दरियाए गंगा से जोड़ता है। 5.5 एकड़ पर मुहित इस प्रोजेक्ट ने लोगों की रसाई को बेहतर बनाया है और भारत के सबसे मौजूद रूहानी मराकज में से एक को नई जिंदगी बख्शी है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वाराणसी के रहने वाले प्रियांशु सिंह ने कहा कि ये कॉरिडोर यात्रियों की आमद और रफ्त में काफी आसानी फराहम कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये इनकलाबी इकदाम इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुल्क अपनी सकाफती जड़ों के तहफ्फुज़ के साथ साथ एतमाद के साथ मुस्तकबिल की जानिब गामज़न है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: पुलिस के खसूसी सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुबैना हैंडलर शहजाद भट्टी से वाबस्ता 8 रुकनी कसीर रियासती दहशतगर्दी मॉड्यूल के मजीद 5 मुल्जमों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बेस्ट 2.2 के दौरान मस्कूरा मॉड्यूल के 3 अरकान को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को दिल्ली और पड़ोसी रियासतों में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने, पाकिस्तान में मौजूद रफ्ताकारों की तशहीर करने और ISI की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर कायम तंजीम तहरीक तालिबान हिंदुस्तान को फरोग देने की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 हथियार, शहजाद भट्टी नेटवर्क से मुतालिक पोस्टर्स और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किए, जिनमें पुलिस एहलकारों को धमकियां देने वाली वीडियोज भी शामिल हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के इलाकों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के मजीद कुछ इलाकों, नीज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जुनूब मगरबी मानसून की पेशगोई के लिए हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक कल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार जजायर में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। क्रिकेट में लखनऊ में 3 एकरोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। इससे कबल भारतीय टीम 49 ओवर्स में 5 गेंदों में शुभमन गिल,

सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हो, युद्धपोत हो या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहले इस परिवर्तन की आधारशिला बनी है। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी

आपसे समझने की कोशिश करते हैं।

0: साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब 4 गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
1: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाया। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट हो गई है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल रबर की सील है वो हेलीकॉप्टर में, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इम्पोर्ट नहीं। कुछ व्हीकल आर्टिलरी में इम्पोर्ट नहीं, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी में, ठीक है। पनडुब्बी एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक जो खुद बनाया है आईएनएस विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है, नेवी के साथ 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्टनर्स में INS अरिहंतर उसके तीनों आदि की श्रेणियाँ बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीज़ें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इम्पोर्ट नहीं। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है, उसमें व्हीकल है, उसमें मूविंग पार्ट, वो इम्पोर्ट। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और भारतीय वायुसेना के पास तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 को 60 के आसपास, और MiG-29 नेवी के पास भी 40-45, तो 100 वो हैं और 270 विमान पास जो कि रूसी ओरिजिन के, उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, जंग छिड़ी हुई है। तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रहा है। तो एक डाई कास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट। दूसरी चीज़ ड्रोन यानी UAV, बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इम्पोर्ट

रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन,

0: समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इसे भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
1: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम में शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को भेजी है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनसे 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने भेजी है ब्रह्मोस, ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको भेजी है कि लैंड से चलेगी तो आर्टिशिप जमीन से सामने के लोगों को। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पर, हमारी कूटनीति भी जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इंसर्कल कर रहा है, आर्मीनिया को आर्म कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिससे तुर्की की नहीं बनती है उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम है, USSR यानी अब सोवियत

sea una casa de

क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट

Jack Irish here.

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर पर प्रस्तुत है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम

सुन रही थी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो दोस्त अमल का नमस्कार। दोस्तों, इश्क की गहराई को कोई नहीं माप सका है। ये दरिया है जो हर किसी को अपनी गहराई में खींच लेता है। आखिर इस मोहब्बत में ऐसा क्या जादू है

श्रोताओं, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते, और जब बात सच्ची मोहब्बत की हो तो जवानी से डरने की क्या जरूरत। आइए आपको ले चलते हैं भारतीय सिनेमा के उस ऐतिहासिक पल की ओर, जहां एक दीवानी ने दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। सुनिए फिल्म मुगले आजम का ये सदाबहार गाना।

जब आंखों ही आंखों में कोई ख्वाब बुना जाए और उस ख्वाब में महबूब का चेहरा नजर आए, तो समझ लीजिए कि मोहब्बत ने दस्तक दे दी है। हवाओं में घोले प्यार के इस खुशनुमा एहसास को महसूस कीजिए जो यश चोपड़ा की

दोस्तों, दुनिया में मोहब्बत हर किसी को होती है, लेकिन किसी किसी की दास्तां इतनी खूबसूरत होती है कि वो लफ्जों में बयां नहीं होती। साहिर लुधियानवी के अल्फाज और मुकेश तथा लता मंगेशकर की रूहानी आवाज में सुनिए प्यार।

प्यार की राहें भी कितनी अजीब होती हैं, कभी हंसी तो कभी अश्कों का कारवां, कभी मिलन तो कभी जुदाई।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। रात्रि के 11 बजा जाते हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्टा के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनाफ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमदाने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
1: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप

समाप्त होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इसी मीटर पर कल प्रातः 5:45 पर पहली सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय।